मन हर मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पुनवडाहे कर दंडौत पुनवडाहे रहाउ सा पतगर सा

दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होवे प्रब मेरा। इहो बिनंती सुन प्रभ मेरे, देहो नाम करे अपने चेरे। सुख हो टल गुर सेवी है, अहनस सहज सुभाय। दर्शन परसया गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चट्टी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी है। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। हस्ती

सबे काज सोहिलड़े थी गुर नानक सत गुर तुठा सबे काज सोहिलड़े थी गुर नानक सतगुर तुठा